एक ही तो वत्नति जीवित अक्थरंगा दन मुलु लोकेम वेला ए जीविते इतिम पुलु अंदगी अन्ना ए आदरे दनुन नहाई कियला उमंग आदरे लोके अक्थरं अश्नी अश्नी बंडारा।